0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बाबा बुल्ले शाह फरमांदे ने, पैर पैरां नाल टुरदे वेखे, हाथ हाथां नाल जुड़दे वेखे, इक्को ही मां दे जम्मे पुत्तर एक दूजे तो सड़दे वेखे, डंगर लै गए बाजी ते बंदे रोटी पिछे लड़दे वेखे, सलूक ना रखन आपस विच जेड़े, हजारा होवन पर हरदे वेखे, कामिल मुर्शिद लंघ जावे जिधरों, बंदे रब रब करदे वेखे, बंदे रब रब करदे वेखे। दियां संभालन इज्जतां नूं ते पुत्तर वारस खजानिया दे, दौलत रखी गर्दे विच इज्जतां दित्तियां हथ बिगानिया दे, सदा किसे नी इत्थे रहना, सब दा दूर ठिकाना, तन इक पिंजरा रूह इक पंछी, ते पंछी ने उड़ जाना, बुरे बंदे नू मैं लब्बन टुरिया, ते बुरा ना लब्बा कोई, जद मैं अंदर छाती पाई ते मेरे तो बुरा ना कोई, ओनू की पता यारी दा जेड़ा गर्जी माल दा होवे, कंड सजन दी लगन नहीं देंदा जेड़ा सज्जन हलाल दा होवे, सजना जे तू हासे दिते दुख भी अच्छे खासे दिते, लोकां ने ते गल ही कीती तू ते खोल खलासे दिते, मिठियां मिठियां गल्लां ते लफ्जां ने गोले जहर सारे, मुंह ते बंदे हाजी नमाजी बंदे ते विच्चों रखन बुग्ज सारे, मंदे हाल उमर लंगाई चंगे वेले दे चा विच, सज्जन बेपरवाह निकले छड़ गए कल्यां राह विच, जेर जबरां शद्दा मद्दा सब दी अपनी कहानी है, वगदे दरिया वांग दुनिया इत्थे लगी आनी जानी है, टकरा मार नमाजा पढ़दा ते दिलों कदी न नीती, मुंहो नेकी नेकी जपदा ते अमलों कुछ न कीती, उत्तों लख पुशाकां पाईयां ते अंदरों ना गई पलीती, ते अंदरों ना गई पलीती, चलो चली दे मेले विच लोकी आंदे जांदे ने, मोया नू खुश करन लई पर पर मिटियां पांदे ने, जिंदिया साड़न तन दा लहू ते मगरों दीवे जलांदे ने, बंदा मरिया भुख दे नाल ते अजर लई देगां पकांदे ने, कुछ टुर गए ने ते कुछ रह गए ने, कुछ डूंगियां सोचां पै गए ने, किसे दुख भी नहीं बर्दाश्त कीता, कुछ जख्मां नू भी सह गए ने, जिन्हां नाल सुकून इस दिल दा सी

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 मई पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 169। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर आपके सामने कराची से रखते हैं, जहां से एक और महारानी जो है उनका इंकशाफ हुआ है। आपको याद होगा कि कल आपके सामने खबर भी रखी थी और एक वीडियो भी, जिसमें FIA के अहलकारों ने बल्कि जत्थे ने एक छापा मारा था। कहने को तो वो छापा था लेकिन असल में वो एक हमला था, हल्ला ही बोला था। वो जो उन्होंने हमला किया था उसमें सुनार जो थे उनके मुंह पर थप्पड़ मारे गए थे। मकसद क्या था? मकसद ये बताया गया कि चेक करना था कि उनके पास जो सारा माल है वो असली है, मतलब कानूनी तौर पर है, कस्टम पेड है, सोना कोई ऐसा तो नहीं जो स्मगल्ड है। बिल्कुल ठीक है, कानूनी तौर पर आपका ये हक है, लेकिन कानून हाथ में लेना आपका हक नहीं है। थप्पड़ रसीद करना आपका ये काम नहीं है। वहां पर एक ऑफिसर थी जो इस सारे काम की इंस्ट्रक्शन दे रही थी। अब जब लोगों ने इसके ऊपर लान तान की, जब उसकी वीडियो आई, वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि फिर YouTube की पॉलिसी में जब तशद्दद होता, थप्पड़ वगैरह दिखाए जाते हैं तो वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर वो वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। अब जब वो थप्पड़ मारने की इंस्ट्रक्शन इन मोहतरमा ने दी तो सभी ने सर्च करना शुरू किया और लान तान भी किया कि ये कौन है जो थप्पड़ मरवाने के अहकाम दे रही है। लेकिन इनका नाम बाहर नहीं आ रहा था, FIA और पूरा सिस्टम इनके नाम को छुपा रहा था। अब सोशल मीडिया पर इनकी आइडेंटिटी को रिवील किया गया है और पता चला है कि इनका नाम रुबाब काजी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड इनका निकला है और पता चला है कि इनके शौहर जो है उनका नाम आफताब काजी है, वो भी एक ब्यूरोक्रेट है। इनके एक भाई भी ब्यूरोक्रेट हैं जिनका नाम मुनसिफ काजी है। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये FIA की ऑफिसर नहीं है, ये असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये ऑफिसर हैं और वहां से डेपुटेशन पर ये FIA में आई हुई है ना कमाल। और सखर की कोई फैमिली है जिससे ये बिलोंग करती हैं। अब ये जो सारी सूरत हाल जब इमर्ज हुई है तो समझ आती है कि कहां से इन्होंने इतनी ताकत ली जिसकी वजह से इनका नाम महकमे वाले सामने नहीं आने दे रहे थे और इनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा था जो वहां खड़े होकर थप्पड़ मरवा रही थी। अच्छा, ये कोई अनोखा काम नहीं है। आजकल आपने देखा कि खवातीन जो अफसरान हैं उनसे ये काम करवाया जाता है। मुझे नहीं पता ये चौधरी साहब की नई इजाद है या शरीफ खानदान की। आपने देखा है कि पंजाब के अंदर भी मरियम नवाज साहबा ने खुद और अपने इर्द गिर्द खवातीन को इकट्ठा किया है। जो इल्जाम है करप्शन करने के, वो मरियम औरंगजेब के ऊपर सख्त किस्म के इल्जाम लग रहे हैं आजकल। कहा यह जाता है या इल्जाम ये लगाया जाता है कि मरियम नवाज की जगह पर सारी मार धाड़ वो कर रही है। अब जाहिर है किसी के पास सबूत तो नहीं है, लोग ये कहते हैं या लोगों का ये तासुर है। उसके बाद ये भी बताया गया कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उसके अंदर भी तासुर लोगों का यही है कि बहुत ज्यादा मार धाड़ हो रही है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप कोई बात करेंगे तो वो खवातीन होंगी। ऐसे ही चौधरी साहब ने, याद कीजिए 9 मई के जितने भी मुकदमात थे उसमें खवातीन जो पुलिस ऑफिसर थीं उन्हें आगे करके, एक वो मैडम रोलेक्स थी, आप सबको याद होगा, अनूश साहबा जो SP थी उनको आगे किया गया और उन्होंने झूठ बोला कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है उनके पास 9 मई की, और बाद में आपने देखा वो सब झूठ था। अब ये जो तमाम खवातीन अफसरान हैं जहां जहां उनको इस्तेमाल किया गया, उसके बाद आपने एक वो ASP साहबा थी जिनको SP की पोस्टिंग दी हुई थी, मुझे उनका नाम भूल गया, वो भी शायद मोहसिन नकवी साहब की रिलेटिव हैं, उनके भी आपने हाल देख लिए थे जिस तरीके से उन्होंने एक लाहौर के एक सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर को, मेडिकल डॉक्टर को बुला के हरास किया और उन्हें हरास करने के बाद कहा कि फलां शख्स से आपने जो पैसे लिए हैं वो वापस करें, गालिबन आंख की सर्जरी का कोई मामला था। तो मेरा ख्याल शहरबानो उनका नाम है या शेरबानो उनका नाम है, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, शहरबानो है या शेरबानो नकवी या कुछ ऐसा उनका नाम है। अब ये एक नया पाकिस्तान के अंदर, जैसे आपने देखा ना कि नए से नए ट्रेंड हैं, जैसे जब तक जियाउल हक थे तो हमारे जो जर्नल्स थे वो इतना ज्यादा प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आए थे, ये कॉर्नर वाले प्लॉट, ये कमर्शियल प्लॉट, ये मारधाड़ नहीं थी। तब जरई जमीनों की मारदाड़ होती थी या ये फैक्ट्रियां वैक्ट्रियां लगती थी जो बड़ी बड़ी फौजी फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट, उनके अंदर नौकरियां वगैरह। لیکن پھر مشرف صاحب کے زمانے میں ہمارے جرنلز کی انٹری ہوئی ریئل اسٹیٹ کے بزنس پہ. بس پھر کیا, پھر تو ہم پراپرٹی ڈیلر بن گئے. تو جیسے ہر جو ایرا ہوتا ہے, ہر جو آرمی چیف ہوتا ہے یا ڈکٹیٹر ہوتا ہے, وہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کرواتا ہے. آصف منیر صاحب نے جو نئی چیز انٹروڈیوس کروائی ہے وہ ہے کہ خواتین پولیس آفس افسران کو سامنے رکھو, انہیں استعمال کرو, ان سے سارا ظلم کرواؤ, اور اگر کوئی ان کے اوپر بات کرے گا تو فوراً عورت کارڈ نکل آئے گا. اب یہ جو رباب قاضی صاحبہ ہیں, ان کی آئیڈینٹی ڈسکلوز ہوئی ہے لوگوں کے سامنے, دیکھتے ہیں ان کے خلاف ویسے ایکشن تو کوئی نہیں ہونا, ظاہر ہے کیا ہونا ہے, یہاں پر تو لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. جب ویگو ڈالے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز لا کے لوگوں کو اٹھائیں گے اور مار داڑ کریں گے, اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سی سی ڈی والے لوگوں کے جعلی پولیس مقابلے کریں گے, تو پھر آوے کا آوا بگڑ جاتا ہے. ایف آئی اے والے کہتے ہیں دو تھپڑ ہم نے بھی مار دیے تو کیا ہوا. کل ہی کی ویڈیو ہے, ایئرپورٹ کے اوپر ایک خاتون جو سفر کر رہی تھیں, انہوں نے کسٹم یا غالباً انہی کی ایف آئی اے کی خاتون جہاں نوکری کر رہی تھیں وہاں کوئی اہلکار, ان سے جا کے پیسنجر خاتون نے کہا کہ باتھ روم میں کوئی ٹیشو پیپر نہیں ہے شاید, تو مجھے ٹیشو پیپر دے دیجئے. اس کے اوپر انہوں نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا کہ میں آپ کو ٹیشو پیپر دینے والی لگتی ہوں, اور وہاں پر ایک ریسلنگ جیسی لڑائی ہوئی, اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی. لیکن چند دن پرانی بات ہے جب اقرار الحسن ایئرپورٹ کے اوپر گالیاں دے رہے تھے, آپ سب نے وہ سب کچھ دیکھا, لیکن کیونکہ پتا تھا کہ ان کے پیچھے چودھری کھڑا ہے, ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. تو لگتا یہی ہے کہ رباب قاضی صاحبہ نے پہلے الیکشن کمیشن کے اندر دبا کے چودھری صاحب کے احکامات بجا لائی ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے آج کل ڈاکٹر انم فاطمہ, آپ سب کو پتا ہے اسلام آباد کے اندر ان کے پاس چار عہدے ہیں, ایک نہیں ہے, چار چار عہدے ہیں, اور وہ بھی زبردستی لوگوں کے گھر خالی کروا رہی ہیں, لوگوں کے اوپر اسی طریقے سے تشدد اور باقی سختی کرنے کا ان کی طرف سے بھی ایسی ہی انفارمیشن آ رہی ہے. ساتھ ساتھ یاد کیجئے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر تھیں گجرانوالا کے اندر, جب آرمی چیف آج کے اور اس وقت کے کور کمانڈر گجرانوالا آصف منیر وہاں پر کور کمانڈر تھے. تو اس طرح سے ہینڈ پک کیا جاتا ہے جو بیوروکریسی کے افسران ہیں ان کو, اور پھر ان سے جیسے بھی کام کروانے ہوتے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, اور اگر خواتین وہ کام کریں تو پھر زیادہ, بلکہ اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ کوئی تنقید بھی نہیں کر سکتا. اب آگے بڑھتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ شازیب جلانی صاحب نے ڈان نیوز کے اوپر بات کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن میں صرف 70 بچے پاس ہوئے ہیں, ہزاروں بچے فیل ہوئے ہیں, ہزاروں بچوں نے ایگزام دیے, صرف 70 بچے پاس ہوئے ہیں, اور یہ جو 70 بچے ہیں یہ سیاستدانوں کے, بیوروکریٹس کے اور بڑے لوگوں کے بچے ہیں, ان میں عام لوگوں کے بچے اس تعداد میں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرٹ کو اڑا کے رکھ دیا ہے, اندھیر نگری ہے, نہ عدلیہ کے اندر کو میرٹ ہے, نہ کسی اور ادارے کے اندر رہ گیا, نہ عدلیہ کو فکر ہے. اب جب انہی لوگوں کے بچے آ کے سول سروسز میں آگے بیوروکریٹ بنیں گے تو پھر آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ آگے معاملات جو ہیں وہ کس طرف لے کر جایا جائے گا. اگلی خبر آپ کے پاس سامنے رکھتے ہیں, آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ہے. شہباز رانا یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو ہمارا اگلا بجٹ ہے وہ 2665 ارب کا دیا ہے, یہ والا جو بجٹ آ رہا ہے وہ 2560 ارب کا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ 101 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے ہمارے ڈیفنس بجٹ میں. مین آئی ایم ایف نے اجازت دے دی ہے پاکستان کو کہ آپ ڈیفنس بجٹ میں 101 ارب کا اضافہ کر لیں. اچھا, اب جو فسی منگی ہیں, ویسے تو یہ بلومبرگ میں لکھتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی اکثر چودھری صاحب کے حق میں ہی لکھتے ہیں, مطلب ہے تو بلومبرگ اعلیٰ ادارہ, آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں, مثلاً نیو یارک ٹائمز کے اس سے پہلے غالباً ان کا نام سلمان تھا کہ کیا تھا مجھے یاد نہیں, اب جو ان کے کرسپونڈنٹ تھے پاکستان کے لیے وہ اندر سے پورے کے پورے پٹواری تھے. وہ خبریں تو نیو یارک ٹائمز میں لکھتے تھے لیکن آپ ایسے ہی سمجھیں کہ کوئی پٹواری لکھتا تھا. اب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوری ہے تو یہ اتھینٹک ہی ہوگی, لیکن کیونکہ ایک پٹواری اس خبر کو فائل کرتا تھا یا پٹواری نما جو ان کا تاثر تھا کہ وہ ایک پٹواری ہیں, تو اکثر نیو یارک ٹائمز کی جو سٹوریز ہوتی تھیں وہ ون سائیڈڈ ہوتی تھیں یا ان کے اندر جو پورا کانٹیکسٹ ہوتا تھا کسی چیز کا وہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ ایک پریٹیکسٹ کے اوپر, ایک اپنی سوچی سمجھی جعلی کہانی کے اوپر اکثر کہانیاں جو ہیں وہ بلڈ کر کے شائع کر دی جاتی تھیں. ایسی صورتحال فسی منگی صاحب بھی اکثر کرتے ہیں بلومبرگ کے اندر, وہ بھی پرو فیلڈ مارشل, پرو پاکستانی ملٹری, پرو جو ملٹری جرنلز کی میں بات کر رہا ہوں جو ان کے انٹرسٹ ہے, اور پرو پی ایم ایل این اکثر سٹوریز فائل کرتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہیز گیون ا ریونیو ٹارگٹ, IMF ने पाकिस्तान को अब नया जो रेवेन्यू टारगेट है वो 61.3 बिलियन डॉलर का दिया है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने पेट्रोलियम के ऊपर, सिर्फ पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स लेना है वो 1.73 खरब, तकरीबन 2 खरब रुपया या 2.25 खरब रुपया जो है वो आपने अगले साल पेट्रोलियम के ऊपर जो है वो टैक्स देना है। इस साल से दुगना आप कह लीजिए, इसका मतलब यह है कि आप तेल की कीमतें अगर इस साल से आपने दुगना टैक्स देना है तो खुद ही जरब और तकसीम दे लीजिए कि आपने कितना ज्यादा महंगा तेल अगले सालों में खरीदना है। वो कहते हैं कि सिर्फ पेट्रोलियम के ऊपर जो आपको लेवी और टैक्स देने पड़ेंगे वो अब 18 बिलियन डॉलर के देने पड़ेंगे अगले साल में। इससे लग ही रहा है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफान आ रहा है, मतलब तूफान तो पहले ही है, अब आपने उसका लफ्ज इस्तेमाल करना है कि आगे क्या आ रहा है। जो अभी है उसको भूल जाइए, क्योंकि ये जो फसी मंगी साहब ने ब्लूमबर्ग में खबर, मैंने ये बताया कि ये अमूमी तौर पर प्रो मिलिट्री जर्नल्स खबर लगाते हैं, नून लीग के प्रो खबर लगाते हैं, और अगर ये कह रहे हैं कि दुगना तकरीबन जो है वो अगली दफा पेट्रोलियम के ऊपर हुकूमत ने टैक्स लेना IMF के साथ ये तय हुआ है, तो फिर आप कानों को हाथ लगा लें, आप खुद ही सोच लीजिए कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो तमाम कसरें और वट जो है वो निकाल के रख देगी, और मुझे नहीं पता कि लोग इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे और कैसे अफोर्ड करके आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ शहबाज राणा की भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो काम करने वाले, जिन लोगों को काम चाहिए, कुछ के पास नौकरी है और कुछ को चाहिए, जो काम करने वाले लोग हैं, मतलब जिनमें कुछ के पास नौकरी है और कुछ को चाहिए, उन तमाम की तादाद 13 करोड़ है, और इसके लिए अगर आपने इन तमाम लोगों को नौकरियां देनी है तो 7% कम अज कम ग्रोथ रेट होना चाहिए, तो तब जाके आप 13 करोड़ लोग जिन्हें नौकरियां चाहिए उनको नौकरियां दे सकते हैं। वो कहते हैं 2050 तक ये जो 13 करोड़ लोगों को नौकरियां इस वक्त चाहिए ये डबल हो जाएगा, 25 करोड़ लोग होंगे पाकिस्तान में ऐसे जिन्हें नौकरियां चाहिए होंगी। अगर हमने उन तमाम लोगों को रोजगार देना है तो अगले 24 सालों के अंदर, आप ये समझ लीजिए, जो कि आप कोई बहुत लंबी बात नहीं है, हमें हर साल 7% के ऊपर ग्रोथ रेट अपना रखना पड़ेगा। इमरान खान की हुकूमत में 6% प्लस का ग्रोथ रेट था, जिसको माइनस में लाके खड़ा कर दिया, मीन प्लस में भी नहीं रहने दिया, पहले 2 साल तो इन्होंने माइनस में रखा, और ये हमारे मिलिट्री जर्नल्स का कारनामा है। लेकिन जैसे पाकिस्तान तोड़ने का किसी ने, जो उसका वजन था वो आज तक नहीं उठाया, उसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, इस तबाही की भी जिम्मेदारी जो है वो कोई कबूल करने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसकी टोपी उसके सर होगी, उसकी टोपी उसके सर होगी, ये कोई मानेगा नहीं कि ये हमारी वजह से हुआ है। फिर उसके बाद गुज़श्ता 2 साल में कोई 49 खरब का इस्तस्ना बड़ी कंपनियों को दिया गया है। इस्तस्ना एक तो फील्ड मार्शल को मिला हुआ है, आसिफ अली जरदारी को मिला हुआ है, इस्तस्ना होता है कोई पूछगिछ नहीं या रायत, तो 49 खरब, ये पिछले दिनों अखबार की गालिबन डॉन की भी स्टोरी थी, तो ये जो 49 मतलब 50 ट्रिलियन रुपीज, ये छोटी अमाउंट नहीं है, 50 ट्रिलियन की जो इस्तस्ना दी गई है ये बड़ी बड़ी कंपनीज को दी गई है, और वो कंपनीज इन्हीं की हैं, जैसे शुगर माफिया को दी जाती है, फर्टिलाइजर को दी जाती है, या वो चौधरी की कंपनीज हैं, या वो बड़े बड़े फ्यूडल्स की, या बड़े बड़े बिजनेसमैनों के वो काम हैं, या सियासतदानों के हैं, मतलब पाकिस्तान की अशराफिया 50 खरब की सब्सिडी खा गई है, 50 खरब का इस्तस्ना खा गई है, गरीब को कुछ नहीं मिला, जो उसके पास हेल्थ कार्ड था वो भी उससे छीन लिया है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब आपके सामने हम ये बताते हैं, तो ये चंद गरीब लोग हैं जिनकी सूरत हाल है, कोई अंगूठी बेच रहा है, तो कोई रिक्शे वाला कह रहा है कि मेरा कुछ पूरा नहीं हुआ, तो कोई और कहानी सुना रहा है, ये 2-3 लोगों की छोटी छोटी कहानियां सुनिए कि इस वक्त गुर्बत से लोग कितने तंग हैं और किन हालात में पहुंचे हुए हैं, फिर आगे चल के आपको ये जो अशराफिया है इनके हालात दिखाते हैं। ये जरा कुछ गरीबों की, क्योंकि इनकी आवाज हमेशा दब जाती है, इनको कवरेज नहीं मिलती, इनकी बात कोई आगे पहुंचाने वाला नहीं होता, इनके ऊपर कोई सर्च लाइट नहीं डालता कि इनको मेन स्ट्रीम के अंदर ला के डिस्कस किया जाए, तो इनकी बात जरा सुनिए।
2: इमरान खान सही कह के गया था, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग नहीं कर सकते हैं।
3: बर्दाश्त हो रहा है?
2: नहीं हो रहा ना बर्दाश्त,
3: कब तक बर्दाश्त, इस हालत में रहेंगे, बर्दाश्त कर भी रहे हो भी नहीं रहा।
2: मार दिया हुआ इन्होंने हमें, मार दिया हुआ है, हमारे
4: ये बिजली का बिल आप देने के लिए
5: अंगूठी बेचने आए
4: अंगूठी बेचने आए
6: और भी अखराज आते हैं घर के, मेहनत करने आते, काम ही नहीं है मार्केटों में, फारिग बैठे हुए हम तो।
7: कल 15 तारीख है, यकीन जानो 12,000 का किराया, खुदा की कसम नहीं है, परेशान हो गए, इस महीने का किराया नहीं निकला, इतना परेशान हूँ। ये देखो मेरे पास, ये मैं घर से प्याज का मसाला बना के लेके आया हूँ, 2 टाइम मैंने खाया है, पहले मैं होटल से रोटी खा लिया करता था तो 150-200-150 रुपये मैं खर्च कर लिया करता था, काफ़ी दिनों से ये प्याज का मसाला है, इसके साथ मेरे एक एक नान लेके खाया है।
8: ये क्या 804, ये क्या चक्कर है
9: 804? इससे तकलीफ बड़े लोगों को होगी, मैं इसलिए बताना नहीं चाहता। चोर डाला हुआ जी, महंगाई नहीं है, 2000 मान है, और 2000 मैं इंचार्ज हूँ फैसला बस स्टैंड पे, मेरा नहीं बन रहा, ये लोग कह रहे हमारा बन रहा है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा।
2: और गरीब आदमी रोटी से आजिज हो गया है, पानी से आजिज हो गया है, बिजली वो नहीं मिल रही, गैस वो नहीं मिल रही, 500 रुपए किलो अब ये नया लेवी लगाने लगे हैं।
8: आपने 2000 का कमाया है,
2: 2000 ये 300 रुपया कमाया भाई, कौन कहता है, झूठ बोली जाती है जितने मर्जी है, देखे इन्होंने तो घर की रोटियां छीन ली है।
8: लेकिन अब महंगाई तो कंट्रोल की है इन्होंने।
2: कौन सी महंगाई कंट्रोल की है, आलू 40 रुपए किलो हो गए हैं, 20 रुपए किलो बिक रहे थे रमजान में, करेले 250 रुपए किलो है, छोटा गोश्त 3500 रुपए किलो है, ये महंगाई कंट्रोल है? हम लोग तो चलो मजदूरी कर रहे हैं, कभी खा ली कभी ना खाई, गुजारा कर लेते हैं।
8: 216 रुपए टैक्स है पेट्रोल में, टैक्स 212 रुपए, सॉरी 212 रुपए टैक्स है, इमरान खान के दौर में 150 रुपए पेट्रोल था, 150 रुपए पेट्रोल था,
10: बेरा कर की इमरान खान ने
8: बेरा कर ना नहीं किया है, जो 40 साल पहले तो फिर आ गए।
2: महंगाई तो इस दौर में हुई है ना, हम तो खुद नून लेके।
8: अच्छा तानू नहीं, तानू कोई तब बीमार हो जाओगे, किसे जाओगे,
10: हॉस्पिटल
8: चेहरे लंदन वाले पाकिस्तान वाले, ये मेरे भाई 3 दिन स्ट्रेचर पे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं 1000 रुपया दे दो हम आपको बेड दे देते हैं। मेरे 1 महीने से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 1 महीने 21-22 दिन हो गए, मैं आपको कॉल दिखाता हूँ, स्कूल से कॉल आई है, तो मेरे घर में बिजली नहीं है, पंखे बंद है, मैं कैसे अपने घर में रहूँ, मेरा मीटर उतरा हुआ है, मैं कैसे रहूँ। आज 22वां दिन है, स्कूल से मैडम का फोन आ गया, मैंने कहा मैडम मम्मी ने भी तब भेज सकता, ये मैं शुगर का मरीज हो गया हूँ, आप कह रहे हैं ना 1 पैसा इन्होंने बिजली सस्ती की है, ये 20-22 रुपए की गोली है, मैं पूरा महीना बिजली एक पैसा बचाऊं तो एक गोली नहीं आनी इसकी।
1: सुन ली आपने, तो ये सूरत हाल है इस वक्त गरीब की इस मुल्क के अंदर। लेकिन आगे सुनिएगा, डॉक्टर इशरत हुसैन ने कहा है कि FBR के अंदर 100 ऐसे अफसरान हैं, जी हाँ 100 ऐसे अफसरान हैं जिनकी टोटल मालियत जो है वो $100 मिलियन से ज्यादा है। इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी सराइयत की हुई है। ऊपर हमने आपको बताया कि 50 खरब 50 ट्रिलियन प्रिसाइजली 49 ट्रिलियन जो है वो सब्सिडी ले गई अशराफिया, तो साथ FBR के अफसरान की हालत भी देख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर हो क्या रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके सामने हम सूरतयाल रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये एक वीडियो देखिए, ये वो वीडियो है जो एक फौजी अफसर हैं या उनके कोई साहबजादे हैं उन्होंने लगाई है, दिखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई आर्मी के ऑफिसर हैं, इन्होंने जो वीडियो लगाई उस पर जाहिर है वो डिफरेंट किस्म की जो अयाशियाँ उनको करने को मिल रही हैं फौजी सेटअप के अंदर वो दिखा रहे हैं, जिसमें गोल्फ क्लब्स हैं, जिसमें बाकी बहुत सारा ऐसा सूरत हाल है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो यो हनी सिंह का गाना लगाया हुआ है, जो हम आपको कॉपीराइट्स की वजह से नहीं सुना सकेंगे, लेकिन ये गाना आपको बता देते हैं अगर आप सर्च करके देखना चाहें, उसके जो कुछ बोल हैं पूरे तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो कहता है कि आई एम मदर, आगे एफ वर्ड है, मिलियनर, डर्टी मनी सुपर पावर्स, पुल अप लाइक अ शेख, शोफर्ड कार्स, टेलर्ड सूट्स। तो ये अयाशी, ये ब्रैग, ये शेखी बखेर रहे हैं ये मिलिट्री के अफसर, जो अपना लाइफस्टाइल, लग्जरी प्रोटोकॉल, अलीट क्लब्स, एक्सपेंसिव कार्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स और ये सब कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें फील्ड मार्शल भी और DGISPR भी बताते हैं कि ये गरीब की रिप्रेजेंटेटिव फौज है। वो हमें ये बताते हैं कि ये अल्लाह की फौज है, गरीब की रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें कोई शक नहीं, जो आम फौजी है वो तो ऐसा ही है, लेकिन ये जो बड़े बड़े जर्नल्स हैं, इनकी जो औलादे हैं और जिस तरह के ये वीडियोस, ये हमने कहीं से खुद नहीं प्रोड्यूस की, ये उन्हीं की वीडियो है, ये इस वक्त पड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जाकर देख लीजिए। ये जो गाने के आपके सामने बोल रखे हैं, जो मैं पूरे रख नहीं सकता, जिसमें गाली गलौज है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से वो वीडियो भी लगी हुई है, एक तरफ अशराफिया, दूसरी तरफ आपको लगेगा कि सिर्फ ये फौजी अफसरान करते हैं, नहीं, अशराफिया का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये आगे देख लीजिए, ये एक ब्यूरोक्रेट है कोई, ये भाग रहे हैं, साथ इनकी छोटी बेटी नन्ही सी, जो हमारी भी बेटी की तरह है, अल्लाह इसकी किस्मत अच्छी करे, ये बच्ची भाग रही है, लेकिन पीछे गौर कीजिए, اب اس بیٹی کو کیا سکھا رہا ہے باپ کہ یہ جو قوم کا اس وقت پیٹرول جلانا ہے. یہ ویڈیو چند مہینے پرانی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ نہ کوئی سمجھ لے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ آج کی ہے. تو ڈسکلیمر یہ کہ چند مہینے پرانی ویڈیو ہے, لیکن آپ کو صرف بے حسی دکھا رہے ہیں کہ پیچھے ذرا گاڑیاں اور پروٹوکول دیکھیے, وہ ساتھ ساتھ بھاگ رہا ہے اور یہ باپ بیٹی بھاگ رہے ہیں. کتنا عوام کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور اس کے اندر کتنے سیکیورٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. یہ بچی تو پھر انٹائٹل ہوگی نا, جیسے مریم نواز اپنے آپ کو انٹائٹل فیل کرتی ہے اور اس نے 1300 کروڑ کا جہاز لے لیا اور اس کو لگا ہی نہیں کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں. یہ بچی بھی کل کو کچھ بھی کرے گی, وہ ہو سکتا ہے رباب قاضی کی طرح لوگوں کے منہ پر تھپڑ رسید کروائے یا کچھ بھی کرے. تو ایسے اشرافیہ اپنے بچوں کو انٹائٹلمنٹ فیل کرواتے ہیں اور ان کی ٹریننگ کرتے ہیں کہ آپ لوگ انٹائٹل ہیں. آگے چلتے ہیں, اب اشرافیہ کی بات. اب جہاں تعلیم کی کمی ہے, جہاں پر نیا نیا پیسہ آیا ہے, وہ بھلے بےچارے لوور مڈل کلاس والے ہوں, شکل سے لگتی ہے ہماری بہن کوئی ایسی ہو سکتا ہے, شکل مین میں ان کی ظاہری شکل کی بات نہیں کر رہا, جو اوور آل اپیئرنس ہے اس سے لگ رہا ہے کہ کوئی لوور مڈل کلاس سے یا تو پیسے آ گئے ہیں پہلی دفعہ یا کوئی اور معاملہ ہے. ان کی ذرا حالت چیک کیجیے, انہوں نے بھی چھوٹی بچی ساتھ بٹھائی ہوئی ہے. ہم ساری عمر یہی پڑھتے سنتے رہے کہ مجروں میں جو طوائفیں ہوتی تھیں ان کے اوپر پیسے پھینکے جاتے تھے. اب یہ نیا رواج آ گیا ہے, چھوٹے بچوں کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں, اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر پھینکے جاتے ہیں, ماؤں کے اوپر اور بہنوں کے اوپر پیسے پھینکے جاتے ہیں. اب یہ جو بھی کوئی خاتون ہے, میں یہی کہہ سکتا ہوں تعلیم کی کمی ہے انہیں, یہ اس بچی کے سر کو پہلے پیسے لگا رہی ہیں, یہ سر کو لگائے جاتے ہیں صدقے کے لیے غالباً. اب مجھے سمجھ نہیں کہ یہاں آگے صدقہ لینے والا کون ہے جو آپ اپنی بچی کے سر کو لگا کے صدقہ دے رہی ہیں, اور پھر وہ جو سنگر ہیں ان کے سر کو بھی لگا رہی ہیں, وہ جو بیٹھی گا رہی ہیں آگے سنگر ان کے سر کو بھی لگا رہی ہیں, اپنی بچی کے بھی لگا رہی ہیں, پھر سنگر کے سر کو بھی لگا رہی ہیں, اور بالکل جاہلوں کی طرح وہ پیسے پھینک رہی ہیں. اب انہیں کچھ نہیں پتا کہ یہ ٹھیک کر رہی ہیں یا غلط کر رہی ہیں, انہوں نے ریلز میں یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ بھی کر رہی ہیں. جو کچھ انہوں نے ریلز میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ بھی کر رہی ہیں, اور انہیں لگتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے اور یہی ذرا فیشن میں ان ہے, اور میں بڑی یو لگوں گی, بالکل یو یو ہنی سنگھ کی طرح کی یا ان کے گانوں کی طرح کی, میں بالکل بڑی یو لگوں گی, اس لیے مجھے یہ کرنا چاہیے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو سمجھ بھی آئے گی جو بات ہم سمجھا رہے ہیں, کیونکہ وہاں شعور کی واقعی بہت کمی لگتی ہے. یہ جو خاتون ہیں بیچاری جو کر رہی ہیں, تعلیم کی اور شعور کی خاصی کمی لگتی ہے, لیکن یہ بھی آج کل کام جو ہے وہ عام ہوا ہوا ہے. دوسری طرف آپ کو ہم نے غربا کی کچھ باتیں سنوائی تھیں, اس سے آپ خود سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں یہ کتنا بڑا ایک ڈفرنس ہے. ساتھ ہی حکومت کا فیصلہ دیکھ لیجئے, انہوں نے جو جیٹ فیول ہے وہ سستا کر دیا ہے اور اس کی قیمت 111.44 روپے فی لیٹر کم کر کے نئی قیمت 320.32 روپے.
5: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 3321-2984, ای میل ریڈیو سنیپلائی

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाइन।

0: वो इंतहा पसंद बच्चे जो जनरल ज़ियाउल हक ने जो मखलूक पैदा की है पाकिस्तान में, वो इसको इस्लाम के साथ तशबीह देते हैं। मज़हब के दो कम अज़ कम हम उसको तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक चीज़ उसका सब्सटेंस, उसकी स्पिरिट है, उसकी रूह है, और दूसरी चीज़ उसके रिचुअल्स हैं। जो रिचुअल्स हैं उसमें जो जो रिचुअल्स हैं, जो उसकी स्पिरिट है उसमें, जो इस्लाम की जो स्पिरिट है उसमें, तो जस्टिस है, इक्विटी है, इक्वालिटी है, इक्विटी है, अदल है, इक्वालिटी है, बराबरी है, इंसाफ है। ये बेसिक हर रेवोल्यूशन, हर मज़हब जो है वो वैल्यूज़ लेके आता है। जो रिचुअल्स हैं वो क्या है? रिचुअल्स ये हैं कि इबादत करने का क्या तरीका है, खाना खाने का क्या तरीका है, कपड़े फलां किस्म के पहनने का क्या तरीका है, ईद का क्या तरीका है, नमाज़ जनाजा का क्या तरीका है, फलां चीज़ का क्या तरीका है, टॉयलेट जाने का क्या तरीका है। अगर आप यूट्यूब पर थोड़ी सी सर्च करें तो आपको बाज़ ऐसी पाकिस्तानी ओरिजिनल ख्वातीन मिलेंगी जिन्होंने नकाब भी पहना हुआ है, और वो बता रही हैं कि इस्लाम में बिस्तरी करने का क्या तरीका है, सेक्स करने का क्या तरीका है, राइट से क्या करना है, लेफ्ट से क्या करना है, ये सब कुछ भी इस्लाम के नाम पर वहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये बेसिकली रिचुअलिस्टिक कम्यूनिटीज़ हैं डिफरेंट किस्म की। लेकिन जो प्रॉब्लम है पाकिस्तानी मुसलमानों का, वो ये कि ये जो रिचुअलिस्टिक एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, ये 10% हैं, ये 15% हैं, इनके सामने खड़ा कोई नहीं होता, किसी को ये हिम्मत नहीं है, इनके सामने लोग सरेंडर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को इस्लाम और मुसलमान कहने लग जाते हैं। जो यूरोप की एनलाइटनमेंट का जो बहुत बड़ा फ़र्क हुआ, जो एनलाइटनमेंट का एरा आया है 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी के बाद, कि कोई क्रिश्चियन डिनोमिनेशन अब दूसरी क्रिश्चियन डिनोमिनेशन को ये नहीं कह सकती कि तुम क्रिश्चियन नहीं हो। अभी सारे क्रिश्चियन हैं, उनके सबके डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंट हैं आपस में, ये एक कम्यूनिटीज़ हैं, इंतहा पसंदों की एक कम्यूनिटी है। लेकिन चूँकि पाकिस्तानी मुसलमानों में इतनी मॉरल करेज नहीं है कि वो इनको खड़े होकर कह सकें, या बांग्लादेश में, बांग्लादेश में है वैसे, मतलब बांग्लादेश की सिचुएशन पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट है, वहाँ पर इस किस्म का एक बांग्लादेश में इस किस्म की हिम्मत है लोगों के अंदर कि वो इनको कह सकते हैं कि तुम रिचुअलिस्टिक हो, तुम इंतहा पसंद हो। लेकिन अभी मैं आपको मसलसल जो थीम बिल्डअप कर रहा हूँ गुज़श्ता चंद दिनों से, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अब मगरब के अंदर लिबरलिज्म को डिफीट हो रही है। ये सारे अल्ले तल्ले जो चल रहे थे गुज़श्ता 10-15-20 बरस से, जहाँ आप मसलसल यूरोप को और बरतानिया को और अमरीका को लेक्चर दे रहे थे कि हमारी वैल्यूज़ हैं, तुम्हें हमारी वैल्यूज़ की बड़ी परवाह करनी पड़ेगी, यकीन माने ये हनीमून खत्म होने वाला है। इसलिए आप में से जो लोग यूरोप में हैं, बरतानिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, आप लोग थोड़ा सा अपना किबला दुरुस्त करें, और ये जो एक्सट्रीमिस्ट आपके सफों में पाए जाते हैं, इनको शट अप कॉल दें, इनको बताएं कि तुम्हारा जाती मसला है, वी आर प्रिपेयर टू लिव अप टू योर प्रॉब्लम, लेकिन डोंट डिफाइन आर सेल्स अलॉन्ग विद यू। हमें अपने साथ मिला के मत डिस्क्राइब करो कि ये नेसेसरीली इस्लाम है, ये तुम्हारी इंटरप्रिटेशन है, ये तुम्हारा देखने का तरीका और तुम्हारा समझने का तरीका है, जिस तरह से अफगान तालिबान का है। अब इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। थैंक यू।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग, नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33-21-29-84, ईमेल radio@snipeline.com।

0: अमेरिका पे दबाव डाले या अमेरिका से कुछ ज़्यादा जो है वो उस पर उसके खिलाफ कोई बयान दे।
1: ये जो बात आपने कही है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि वो अमेरिका पर किसी तरह से ज्यादा दबाव डाले, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के पास है क्या जो अमेरिका पर दबाव डाल
0: नहीं, दबाव का मकसद यह है कि उस पर प्रेशर भी तो डाल सकते हैं
1: आपने बजा कहा, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान तो हर बात अमेरिका के आम अंतर से रखना कहकर कबूल कर रहा है। हमारे फौजी सरबराह जो है मार्शल फील्ड मार्शल आसिम मनीर साहब वो खुद जाके हर जगह मुजाकरात में शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास बकौल शख्स ब्लूली गंदी दूरी हुकूमत है जो कोई असर नहीं रखती, असर ताकत जो है वो किसी और के हाथ में है
0: जी।
1: वो और जो है वो अपने रंग इस तरह से दिखा रहा है कि झुक झुक के सलाम करना और झुक झुक के कहना कि ये बात तुम्हारी समझ में आती है। जब बात तुम्हारी समझ में आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो कुछ कहा जा रहा है आप वही करने पर तैयार हैं, और अगर आप वही करने पर तैयार हैं तो ये पाकिस्तान के आवाम की तोहीन होगी। कायदे आजम के फरमानात जो हैं फलस्तीन के मुतालिक और कश्मीर के मुतालिक आप उनको रोंद कर आगे बढ़ रहे हैं
0: जी जी।
1: जो कि सख्त खतरनाक है।
0: लेकिन एक और बात भी है नसर साहब, एक तो है कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है होने हैसियत से अमेरिका जो है उस पर दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन पाकिस्तान इतना भी गिरा गुरा नहीं है कि वो जो है अमेरिका को साफ तौर पे या जो है थ्रू प्रॉपर चैनल डिप्लोमेटिक चैनल बताए कि भाई हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम इसराइल को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अभी अमेरिका के जो वज़ीर दफा है वो तो उनको मिनिस्टर ऑफ वॉर कहते हैं, वो गए हुए थे एक कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो दूर मार करने वाले मिसाइल की जो डेवलपमेंट हो रही है उससे अमेरिका नाराज़ नहीं है, तो उनके जो पीठ एक्सेस है उन्होंने साफ कहा कि हमें इससे कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और उससे हमारे और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, अमेरिका को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है।
1: ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि वहाँ पर उन्होंने अमरीकी जुम्मेदार अफसरान ने ये बयान दिया था और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इन दोनों मुल्कों की तरफ से इस वक्त तक असले के लिए जो कुछ किया जा रहा है जिसने किया वो उनकी निगाह में है और वो समझते हैं, और दोनों ममालिक के दरमियान जो तनाजात चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि ये मुल्क अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं करते हैं। अब इस करते रहने से अगर आपको ये समझते हैं कि आपको ये सहूलत मिल गई है कि आप हर मुमकिन आप ये करेंगे आप वो करेंगे तो ये सरासर गलत है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान के एथलीट प्रोग्राम की तनसीबात जो है उनका दौरा करने की अमरीकी अहदेदारों को इजाजत दे दी गई। क्यों? क्या उनको ये यकीन नहीं कि पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से एटमी तवानाई की जो आलमी तंजीम है उसके तमाम कवानीन जवाबत और असूलों को मद्देनजर रखकर अपने ये कदम बढ़ा रहा है?
0: तो ऐसे ऐसे तो अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं वो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जो दफ्तरान हैं और वहाँ भी उनके भी दौरे, कहने का मकसद ये है कि ताल्लुकात जो हैं अमेरिका के, अमेरिका को भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हैं और पाकिस्तान की भी ज़रूरत है इंडिया की भी ज़रूरत है, तो ये इंटरनेशनल ख़बरें जो हैं ये आगे पीछे हो जाती हैं। ख़ास तौर पर ट्रंप साहब की हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उसका तो ना कोई सर है ना कोई पैर है, कल एक बात करते हैं परसों दूसरी बात कर देते हैं। तो
1: कहा और यही बात जो है
0: जी जी
1: पूरी दुनिया को इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दो चार रखे हुए है कि जाए मानदंड न पाए रखते
0: जी बिल्कुल
1: ना वो आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे
0: से एग्जैक्टली हाँ,
1: और जहाँ खड़े हैं वहाँ उनको सख्त खतरा है
0: जी। और ईरानी सदर जो है मसूद पशकियान उन्होंने तो कल कहा है कि अमेरिका जंग ख़त्म करना चाहता है, सॉरी ईरान जो है जंग ख़त्म करना चाहता है लेकिन हम एक बाविकार फ्रेमवर्क के हसूल के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सरेंडर वगैरह जो है ना इसका तो कोई सवाल ही पता नहीं होता कि हम अमेरिका के सामने जो है पाँव जो हैं वो क्या कहते हैं उसको हम उनके आगे झुक जाएँ।
1: बिल्कुल आपने मिला कहा और यही चीज़ जो है ये पाकिस्तान को भी सामने रखनी चाहिए
0: कि
1: अमरीकी मुतालबात का पलंदा हाथ में लिए कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, कभी सऊदी अरब कभी ईरान जाता है,

0: उसको अपने वजूद का और अपने जियोपॉलिटिकल बेवकू का
1: जी
0: एहसास रखते हुए ये देखना चाहिए कि उसकी अपनी पोजीशन जो है वो क्या है और कहाँ खड़ा है।
1: बिल्कुल,
0: सऊदी अरब के पीछे चल देना कि वो ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे। अब पाकिस्तान में आप देखते हैं कि किस तरह से इसराइल के लिए सरकारी सतह पर राय आमा हमवार की जा रही है, इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते
1: जी।
0: क्या वजह है कि पाकिस्तान के तमाम मुल्ला और वो लोग जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे आज क्यों खामोश बैठे हैं
1: जी?
0: क्या वो देखते हैं कि उनकी हुकूमत जो है वो इसराइल को तस्लीम करने के लिए किस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है?

मिट्टी का जिस्म है, मिट्टी की जान है, फिर भी बशर को कितना गुमान है। ए इंसान, तू इस दुनिया की रंगीनियों में खो गया, मौत को भूल बैठा, गफलत में सो गया। याद रख, ये सांसें अमानत है, तेरी जागीर नहीं, कफन में जेब नहीं होती और कब्र में जंजीर नहीं।

कि वो अपने आप को ज़्यादा मस्कुलर साबित करना चाहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही 200 किलोमीटर पे जो एक सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें घमसान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तकरीबन 8-10-15 घंटे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। 2019 में पुलवामा के बाद उन्होंने बालाकोट के ऊपर बाकायदा हमला कर दिया इंडियन एयरफोर्स ने। फिर 2025 के अंदर आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो हैं दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, दोनों के दरमियान जंग होती रही। 2022 से न्यूक्लियर रशिया जो है, जिसके पास 300-400 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, उसके और यूक्रेन के दरमियान में घमसान की जंग हो रही है, जिसमें लाखों लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और उसमें यूक्रेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है रशिया के शहरों पे, रशिया के मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला करने के लिए, बावजूद इसके कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। फिर 2025 में ईरान और अमरीका के दरमियान, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं रशिया, इसराइल, अमरीका, उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। ईरान ने इसराइल के ऊपर काउंटर स्ट्राइक्स करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो कुछ भी वेपन सिस्टम उनके पास था उन्होंने इसराइल को उससे टारगेट किया। और 28 फरवरी के बाद से आपने देखा कि फिर उस किस्म की सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तानी पैराडाइम अपनी जगह पे उधर ही है, उसकी भी बहुत से रीजंस हैं, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने अपना ये पैराडाइम जो है वो वहां पे उन्होंने प्रेजेंट किया। और इसका जिस्ट क्या है, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट कहना क्या चाहती, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट बेसिकली कहना यह चाहती है कि कोई ऐसी जंग नहीं हो सकेगी जिसमें 1971 की तरह पाकिस्तान को एक मेजर गेम चेंजिंग पॉलिटिकल डिफीट हो, जहां हमें सरेंडर करना पड़ जाए, हम कोई टेरिटरी जो है वो लूज कर दें। ये नहीं हो सकेगा, बिकॉज हम न्यूक्लियर हैं, अल्टीमेटली अगर चीज़ें इस डायरेक्शन की तरफ जा रही होंगी तो हम फिर न्यूक्लियर हथियार जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन असल में भी ये चीज़ एक चीज़ को मिस कर देती है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो इस वक्त इंसर्जेंसीज हैं। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान दोनों जगहों पे एक बड़ी खौफनाक किस्म की इंसर्जेंसीज चल रही हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि इन इंसर्जेंसीज को अगर कोई बैरूनी मदद है, जैसे बलूचिस्तान में है, तो किस एक्सटेंट तक है, और वो जो बैरूनी ताकत है अगर वो हिंदुस्तान है तो उसके अपने अगराजों मकासद क्या है। वो महज इन इंसर्जेंसीज को बुनसन बर्नर्स पर रख रहे हैं ताकि ये सुलगती रहें, या इसको किसी डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। और इसमें जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 2-3 दिन में, जब आप देखते हैं कि वेडनेसडे के दिन मॉस्को के अंदर जो सिक्योरिटी फोरम था, वहाँ अफगानिस्तान और रूस के दरमियान में एक मिलिट्री म्यूचुअल पैक्ट जो है, डिफेंस पैक्ट तय पाया, जिसका अभी हमें खद्दोखाल और डिटेल्स हमें उसकी नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इसके नतीजे में रशिया जो है वो अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम भी देगा और उस एयर डिफेंस सिस्टम की उनको ट्रेनिंग भी देगा। और आई एम श्योर कि जनरल नोमान ज़िक्रिया और पाकिस्तानी जनरल हेडक्वार्टर्स जो हैं वो इस सूरत हाल को गौर से देख रहे हैं, बिकॉज ज़ाहिर है कि इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के ऊपर होंगी। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि आप देखिए कि 1950 से लेके अफगानिस्तान 1950 से लेके 1975 तक अफगान हुकूमतें जो हैं, जो भी अफगान रजीम थे, उनके और फॉर्मर सोवियत यूनियन के दरमियान में हमेशा एक मिलिट्री कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहा। और 1979 में जब सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पे इन्वेजन किया, जो सोवियत इन्वेजन था, उन्होंने कब्जा कर लिया, तो उसका कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड ये था कि जो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट रजीम उन्होंने बिठाया था अफगानिस्तान के अंदर, उसके खिलाफ अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, पाकिस्तानी एजेंसी पिशावर से ISI, और उसके अलावा जो सऊदीज हैं वो उस कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट रजीम को फेल करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे, और उसको कवर करने के लिए, जो कि रजीम टॉटर कर रहा था, उनको उसमें इंटरफेयर करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जितना तारीख का पहिया घूमा है, उसके बाद वो कहते हैं जितों दी खोती उसे आन खलोती, कि दोबारा एक बार फिर सारे टाइम पीरियड के बाद वो अफगान तालिबान जो पैदा हुए थे सोवियत इन्वेजन के खिलाफ, उनके और रशिया के दरमियान में अब एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पैदा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जोग्राफिया जो है, द जोग्राफी मैटर्स, वही जोग्राफी जिसके नतीजे में ब्रिटिश एम्पायर के मुकाबले में यहाँ पे ज़ारस रशिया का रोल हुआ करता था, उस चीज़ ने अपने आप को दोबारा से रीएनैक्ट कर लिया। अब ये शंग्रीला डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जहन में रखिए। अब आए एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट में, चूंकि जो मैंने शुरू में बात की है, मैं बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जिससे आप खुद चीज़ों की असेसमेंट कर सकते हैं। कहते हैं, सुनने में आ रहा है, कन्फर्म्ड है वैसे, ये भी मतलब अब है तो एक सोर्स से ही पता चला, लेकिन ये आप और भी बहुत सी जगहों से कन्फर्म कर सकते हैं, खास करके जिन लोगों का, जिनको एक्सेस हासिल है मिलिट्री के हलकों में। जनरल आसिम मुनीर ने चाइना से वापस आने के बाद ईद उल अजहा के दूसरे दिन, 28 मई 2026 को उन्होंने अपने 10 जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, जिसमें को कमांडर्स भी थे, लेकिन उसमें और भी बहुत से टॉप जनरल्स थे जो उनके अपने कॉन्फिडेंट्स हैं, उनके साथ उन्होंने एक मीटिंग की।
उस मीटिंग में कौन कौन शामिल था? उस मीटिंग में डीजी आईएसआई जनरल आसिम मलिक साहब थे, उसमें डीजी एमआई